0: तीसरा है 50 जो मेरे तरफ से नेम है.
1: That's 50. This is November 1. You can give me a call.